0: गोरिया बैन लगा दी कोई आमा तो दस बकार बैन गोरिया बैन लगा दी कोई आमा तो दस बकार बैन
1: बंदरवा बंजी बेजाज बेजली बोरा देर बमेल कसीरु लखवा विरदुन जाब कुएन बमेल कसीरु लखवा विरदुन जाब कुएन
0: सस्ती मनी